ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

दीवानी मस्तानी ओ जानी जरा नजरें मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा

0: तेरा से झटका हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला.
1: The voice of Mohammed Rafi on your sinner Sapna. Radio Jagati, 102.7 FM, 6 minutes after 11. Continuing with the music.

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक

गामाय शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां आत्मतत्व प्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। लक्ष्मी करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम शत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।